अमूल गुण अमूल व्यापार अमूल व्यापार ये अमूल भंडार अमूल आवहे अमूल ले जाहे अमूल पाए अमूला समाहे अमूल धर्म अमूल दीवान अमूल तुल अमूल प्रवाण अमूल बख्शीस अमूल निशान अमूल कर्म अमूल फुरमान अमूलो

गावह चित गुप्त लिख जान है, लिख लिख धर्म विचारे, गावह ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन सदा सुवारे, गावह इंदासन बैठे देवत्या दरनाले, गावह सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारे, गावन जति सति संतोखी, गावह वीर करारे, गावन पंडित पढ़ नरखी सरे,

दे। सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगमा अगम अपारा सब त्याव है सब त्याव है तुझी हर सच्चे सृजनहार सब जी तुम हरे जी तू जिया का दातारा हर त्याव हो संत हो जी सब दुख विसारण हार हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तुम कट कट अंतर।

प्रीति आवे इहो रस अकथ कथा तिन जानी जा कौ आए सोई बिहाज हो हर गुर ते मनहि बसेरा निज घर महल पावहु सुख सहजे बहुर ना होए गो फेरा अंतर जामी पुरख विधाते।

जिन कौ सतगुरु थापिया तिन मेट न सकै कोई। ऊना अंदर नाम निदान है नामो प्रगट होए। नाओ पूजिए नाओ मनिए अखंड सदा सच सोए।

जिस सतगुर पुरख ना भेटियो सो भाव जल पचाय पचाय यो मानक जियो निर्मोल है यो कौडी बदले जाय जिन्ना सतगुर रस मिले से पूरे पुरख सुजान गुर मिल भाव जल लंघी है।

अमल कर धरती बीज शब्दो कर सच की आव नित देह पाणी होए किसान ईमान जमाए लय भिष्ट दोजक मूड़े ए बजाणी मत

नाम निदान अंतर हर सरब रहया चूका मन अभिमान हृदय कमल प्रगासिया लागा सहज ध्यान मन निर्मल हर रब रहया पाया दरगह मान सतगुर सेवन अपना ते विरले संसार हों मैं ममता मार कै हर राख्या उरतार हों तिन कै बलिहारण जिन्ना नामे लगा प्यार सही

कटे से निर्मले हों सद बलिहार जास। हृदय जिनका हर बसै तित कट है परगास। मन मेरे हर हर निर्मल त्याय

गया पछताए, जिस नदर करे सो उबरे, हर से पील बलाए, देखा देखी सब करे, मन मुख बूझ ना पाए, जिन गुरमुख हृदय शुद्ध है।

मुख सद उज्जले तित सच्चै दरबार। वही अमृत पीवहै सदा सदा सच्चै नाम प्यार। पाई रे गुरमुख सदा पत होए हर हर सदा त्याय।

है बूझै नाही अन दिन दुख विहानी मनमुख अंध न चेत ही डूब मोए बिन पानी मन रे सदा भजहो हर शरणा।

गुरमत हर लिव उबरे अलिप्त रहे सरनाए ओनी चलन सदा निहालिया हर खर्च लिया पत पाए गुरमुख दरगाह मन्नी है।

गया आप हुआ मेहरबान, सच महल घर पाया गुरका शब्द पछान। भगत जना को राखदा अपनी कृपा तहार, हलत पलत मुख उजले साचे के गुणसार। आठ पहर गुणसार दे रते रंग अपार, पार ब्रह्म सुख सागरो नानक सद बलिहार। श्री राग महला पंजवा पूरा सतगुर जे मिलै पाइय शब्द निधान। कर कृपा प्रभ अपनी जपिय अमृत नाम, जन्म मरण दुख काटिय लागे सहज ध्यान। मेरे मन प्रभ शरणाई पाए, हर बिंदु जाको नहीं एको नाम त्याए। रहाओ कीमत कहन न जाइए सागर गुणी अथाह, वडभागी मिल संगति सच्चा शब्द विसाह। कर सेवा सुख सागर सिर शाह पातशाह, चरण

अपार सखा सहाई अत वड्डा ऊंचा वड्डा अपार बालक बिरद ना जानिए निहचल तिस दरबार जो मंगिए सोई पाइए निधारा आधार जिस पेखत किल विख हिरह मन तन हो वह शांत एक मन एक त्याई है मन की लाह प्रांत गुण निदान नव तन सदा पूर्ण जाकी दात सदा सदा आराध्य दिन विसरो नहीं रात जिनका पूर्व लिखिया तिनका सखा गोविंद तान मान तहन अर्पी सबो सगल वारिय ए जिंद देखै सुने हदूर साध घट घट ब्रह्म रविंद अकिरत कणा नु पालदा प्रभ नानक सद बख्शिंद श्री राग महला पंजवां।

नाम अमृत नदर निहाल मन मेरे सदगुर सेवा सार करे दया प्रभ अपनी एक निमख न मनहो विसार रहा।

थान थनम तर रव रहया प्रभ मेरा परपूर सच पातशाही अमर सच सच्चे सच्चा थान सच्ची कुदरत धारियन सच सिरजोन जहान नानक जपिया सच नाम हों सदा सदा कुर्बान श्री राग महला पंजवा उद्दम कर हर जापना वड भागी तन खात संत संग हर सिमरना मल जन्म जन्म की काट मन मेरे राम नाम जप जाप मन इच्छे फल पुंच तू सब चूकै सोग संताप रहाओ जिस कारण तन तहरिया सो प्रभ डिठा नाल जल थल महियल पूरिया प्रभ अपनी नदर निहाल मन तन निर्मल होया लागी साच प्रीत चरण भजे पार ब्रह्म के सब जप तप तिन ही कीत

साची पूंजी सच संजमो आठ पहर गुण गाओ कर कृपा प्रभ पेटिया मरन न आवन जाओ मेरे मन हर भज सदा एक रंग घट घट अंतर रव रहया सदा सहाई संग रहाओ सुखां की मित क्या गणी जान सिमरी गोविंद जिन चाखिया।

गुरजेवड़ अवर न को दूजा थाओ ना को सुजै गुर मेले सच सोए रहाओ। सगल पदार्थ तिस मिले, सगल पदार्थ तिस मिले जिन गुर डिठा जाए, गुर चरणी जिन मन लगा सेवड़ पागी माए। गुरदाता समरथ गुर, गुर सब मह रहया समाए, गुर परमेश्वर पार ब्रह्म गुर डुबदा लय तराए। कित मुख गुर साला ही है करण कारण समरथ, से मथे ने चल रहे जिन गुर तारिया हाथ। गुर अमृत नाम पिया लिया जन्म मरण का पथ, गुर परमेश्वर सेविया पै भंजन दुख लथ। सतगुर गहर गंभीर है सुख सागर अगखंड, जिन गुर सेविया अपना जमदूत न लागै डंड। गुर नाल तुल न लगई खोज डिठा ब्रह्मांड, नाम निधान सतगुर दिया सुख नानक मन महमंड। श्री राग महला पंजवां।

या सो प्रभ लोड़ सर पर उठी चलना सच छड़ जासी लाख करोड़ सर पर उठी चलना छड़ जासी लाख करोड़ लाख

रहाउ। जिचर वस्या कंत घर जियो जियो सब कहात। जा उठी चलसी कंतड़ा ता कोई न पुछे तेरी बात। पेयड़ शह सेव तू साहुरड़ सुख वस। गुर मिल चज आचार सिख तुद कदे न लगे दुख।

आए गुर के चरण मन मह त्याए छोड़ सगल सियाण पा साज शब्द लिबलाए रहाओ दुख क्लेश ना पओ ब्यापै गुर मंत्र हृदय होए कोट जतना कर रहे गुर बिन तरयो ना कोए देख दर्शन मन साधारे पाप सगले जाहे हौं तिन कै बलिहार ने जे गुर की पैरी पाहे साध संगत मन बसै साच हर का नाउ सेवड भागी नानका जिन्ना मन इहो पाओ श्री राग महला पंजवां संच हर तन पूज सतगुर छोड़ सगल विकार जिन तू साज सवारिया हर सिमर होए उधार।

करणी सार, आप छोड़ सब होए रेणा जिस देव प्रभ निरंकार, जो दिसै सो सगल तू है पसरे आपा सार, कहो नानक गुर परम काटिया सगल ब्रह्म विचार, श्री राग महला पंजवां।

वड पुरख सुजाना रहाओ। मान अभिमान मंधे सो सेवक नाही, तत समदर्शी संत हो कोई कोट मंदाही। कहन कहावन इहो कीरत करला, कथन कहन

हथ वडियाइया पूर्व लिखिया पाए सच करता सच करण हार सच साहिब सच टेक सचो सच बखाणिए सचो बुद्ध विवेक सर्ब निरंतर रव रहया जप नानक जीवै एक श्री राग महला पंजवा।

सतगुर शरणी आया बाहुड़ नहीं बिनाश। हर नानक कदे न विसरो इहो जियो पिंड तेरा सास। श्री राग महला पंजवा।

सच्चा नाम सास गिरास ना विसरै सफल मूर्त गुर आप गुर जीवड अवर न दिसई आठ पहर तिस जाप नदर करे ता पाईए सच नाम गुणतास।

नानक गुर शरणागति मरै नहावै जाय। एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्री राग महला पहला घर पहला अष्टपदियां आख आख मन भावना ज्यों ज्यों जापै वाए जिसनो वाए सुनाई है सो केवड कित थाए आखण वाले जेतड़े सब आख रहे लिवलाए बाबा।

दर दर वेश रसीद बरकत तिनको अगली पढ़दे रहन दरूद बरकत तिनको अगली पढ़दे रहन दरूद पूछना साजे पूछना टाहे पूछना दे वैले अपनी कुदरत आपे जाने आपे करन करे सबना

सच्चो सच्चा आखिए सच्चे सच्चा थान जिन्नी सच्चा मन्या तिन मन सच ध्यान मन मुख सूचे जानी है गुरमुख जिन्ना ज्ञान।

अंदर हो वसा नाव वसै मन आए, बाज गुरु को बार है बिन शब्द बूझ ना पाए, गुरमति परगास होए सच रह लिवला।

श्री राग महला पहला गुर ते निर्मल जानिए निर्मल दे शरीर निर्मल साचो मन वसै सो जाने अब तीर।

पार हाट पटनगढ़ कोठड़ी सच सौदा व्यापार ज्ञान अंजन पै पंजना देख निरंजन पाए गुप्त प्रगट सब जानिए जे मन राखे ठाए ऐसा।

जाए। सुख को मांगे सबको दुख ना मांगे कोई, सुख को दुख अगला मन मुख बूझ ना होए। सुख दुख सम कर जानी है, शब्द तेज सुख होए।

जपतार मान रे राम जप हो सुख हो बिन गुर प्रेम न पाई शब्द मिले रंग हो रहा गुर सेवा सुख पाई है हर वर सहज सिंगार सच माने तिर से जड़ी गूड़ा हेत प्यार गुरमुख जान सियाणी गुर मेली गुण चार।

की सच बोल आप तुलाए तुलसी पूरे पूरा तोल कथने कहन न छुट्टी है ना पढ़ पुस्तक पार काया सोच न पाई है बिन हर भगत प्यार नानक नाम ना विसरे मेले गुर करतारू श्री राग महला पहला सतगुर पूरा जे मिले पाइये रतन विचार मन बीजे गुर अपने पाइये सर्व प्यार मुक्त

होए। गुर भंडारे पाइये निर्मल नाम प्यार, साचो वखर संचिये पूरे कर्म अपार। सुख दाता दुख मिटनो सतगुर असुर संहार, पवजल बिखमंडरा।

अभिमान नानक शब्द विचारिये पाइये गुणी निदान श्री राग महला पहला रे मन ऐसी हर स्यों प्रीत कर जैसी जल कमले लहरी नाल पछाड़िये पी विकसै असनेह जल मह जी उपाय कै बिन जल मरन तनेह मन रे क्यों छूट है बिन प्यार गुरमुख अंतर रव रहे।

अब पीर रे मन ऐसी हर्ष्यों प्रीत कर जैसी चात्रक में सार पार थल हरियावले एक बूंद न पवै खे सार पार थल हरियावले।

नानक दर कर एक है अवर न दूजी जाए। श्री राग महला पहला। मन मुख भुलै भुलाइए फूली ठौर न काए। गुरबिन को ना दिखावई अंधी आवै जाए। ज्ञान पदार्थ खोए।

कवन पता आर अखर पढ़ पढ़ फुलिये देखी बहुत अभिमान तीर्थ नाता क्या करे मन मह मैल गुमान गुरबिन किन समझाइये मन राजा सुल्तान प्रेम पदार्थ पाइये।

मस्तक सच निशान। बहुता जीवन मंगी है मुआ ना लोड़ै को, सुख जीवन तिस आखी है जिस गुरमुख वसिया सोए। नाम विहूणे क्या गणी जिस हर गुर दर्शना होए। ज्यों सुपने निस भुलिए जब लग निंद्रा होए, इउं सरपन कै बस जीअड़ा अंतर हो मैं दोए। गुरमत होए विचारिए सुपना इहो जग लोए, अगन मरे जल पाइए ज्यों बारक दूधै माए। बिन जल कमल सो ना थी है, बिन जल मीन मराए। नानक गुरमुख हर रस

मनमुख पत गवाई, बिन सतगुर को मग न जाने अंधे ठौर न काई, हर सुखदाता मन नहीं वसिया अंत गया पछताई। तेई अड़े जग जीवन दाता गुरमत मन वसाया, आन दिन भगत कर

पंखी बिरख सुहावड़े उडहे चौदस जाए जेता उडहे दुख कणे नित दाज है तै दिल लाहे बिन गुर महल ना जापई ना अमृत फल पाहे गुरमुख ब्रह्म हरियावला साचै सहज सुभाए शाखा तीन निवारिया एक शब्द लिवलाए अमृत फल हर एक है आप देखवाए मनमुख उबे सुख गए ना फल तिन्ना छाऊ तिन्ना पास न बैसी ओना कर ना गिराऊ कटिय है तै नित जाली है ओना शब्द

ब्रह्म जाए। नाम पदार्थ पाई गुरमुख सहज सुभाए, बिन गुर गुण ना जापनी, बिन गुण भगत ना होए, भगत वसल हर मन वसया, सहज मिलिया प्रभ सोए। नानक शब्दे हर सा लाही है, कर्म प्राप्त होए, श्री राग महला तीजा। माया मोह मेरा प्रभ कीना, आपे परम पुलाए, मन मुख कर्म करहे नहीं बूझ है, बिरथा जन्म गवाए। गुरबाणी इस जग मह चान।

जाने खट दर्शन जगया खट दर्शन जोगी सन्यासी बिन गुर परम पुलाए सतगुरु सेव है तांगत मित पाव है हर जियो मन बसाए सच्ची बाणी स्यों चित लागै आवन जान रहाए पंडित पढ़ पढ़वा

शब्द जीवत मरै गुरमुख भव जल तरणा वड्डै भाग नाउ पाइयै गुरमत शब्द सुहाई आपे मन बसिया प्रभ करता सहजे रहया समाई एक ना मन मुख शब्द न पावै बंधन बंद पवाया लख चौरासी फिर फिर आवै बिरथा जन्म गवाया।

संगत पाई है। सुर नर मुन जन लोच दे सो सतगुर दिया बुझाए जियो। सतसंगत कैसी जानी है जिथे एको नाम बखानी है। एको नाम हुक्म है नानक सतगुर दिया बुझाए जियो। यो जगत परम भुलाया आपहु तो दिखवाया। परताप लगा दोहागणी भाग जिन्ना के नाहे जियो। दोहागणी क्या निशानिया खसमहु कुथियां फिर है निवाणिया। मैले वेस न कामणी दुखी रहन विहाए जियो। सुहागणी कर्म कमाया पूर्व लिखिया फल पाया। नदर

जियो। हो सतगुर विट हो कुमाया, जिन भ्रम भुला मार्ग पाया। नदर करे जे अपनी, आपे लैर लाए जियो। तू सबना माहे समाया, तिन करतै आप लुकाया। नानक गुरमुख प्रगट होया, जां कौ जोत धरी करतार जियो। आपे खसम निवाजया, जियो पिंड दे साजया। अपने सेवक की पैज रखिया, दुए कर मस्तक धार जियो।

खुद विटहु कुर्बान जियो, हर इठे नित ध्याएंदा, मन चिंदी सो फल पाएंदा, सबे काज सवारियन, लाहियन मन की भुख जियो, मैं छड़िया सबो तंदड़ा, गुसाई सेवी सचड़ा।

हाथ जियो। मैं बद्धि सच धर्म साल है, गुरसिखां लहंदा पाल कै। पैर धोवा पखा फेरदा, तिस निव निव लागा पाए जियो, तिस निव निव लगा पाए जियो। सुन गल्ला गुर पह आया, नाम दान इशनान दिढ़ाया। सब मुक्त होवा संसारड़ा, नानक सच्ची बेड़ी चाड़ जियो। सब सृष्ट सेवे दिन रात जियो, दे कन सुनो अरदास जियो। ठोक बजाए सब डिठिया, तुस आपे लयन छाए जियो। हुण हुक्म

खेत जा जम पकड़ चलाया वणजारिया मित्रा किसै न मिलिया भेत भेत चेत हर किसै न मिलियो जा जम पकड़ चलाया।

करम धर्म नहीं पूजा, नानक पाए भगत निस्तारा, दुविधा व्यापै दूजा। तीजै पहरै रैण कै वणजारिया मित्रा, सरहंस उलथड़े आए, जोबन घटै जरुआ जणै, वणजारिया मित्रा आम घटै दिन जाए। अंतकाल पछतासी, अंधले जां जम पकड़ चलाया।

कहो नानक भगत सोह है दरबारे, मन मुख सदा पवात, श्री राग महला चौथा, घर दूजा शांत, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मुंद इयाणी पे अड़े, क्यों कर हर दर्शन पिख है, हर हर अपनी कृपा करे, गुरमुख सौहरड़ै कम सिख है, सौहरड़ै कम सिख है, गुरमुख हर हर सदा त्याय, सहियां विच फिरै सुहेली, हर दरगाह बां लुडाए, लेखा धर्म राय की बाकी, जप हर हर नाम की रखै, मुंद इयाणी पे अड़े, गुरमुख

प्रचंड बलाया बलिया गुर ज्ञान अंधेरा बिनसिया हर रतन पदार्थ लाधा हो मैं रोग गया दुख लाथा आप आपै गुरमत खादा।

गोविंद नाम संभाले, मन प्यारिया जी मित्रा हर निभ तेरे नाले, संग सहाई हर नाम प्याई बिरथा कोई न जाए, मन चिंदे से ही फल पावे चरण कमल चितलाए, जल थल पूर रहया बनवारी घट घट नदर निहाले, नानक सिख दे मन प्रीतम साध संग भ्रम जाले, मन प्यारिया जी मित्रा हर बिन झूठ पसारे।

सतगुर तुठे लड़ली ने लाए नौ निद पाए नाओ सर्वस ठाकुर दीना नानक सिख संत समझाई हर प्रेम भगत मन लीना श्री राग के।

हर रंग रत हर त्याव हो हर प्रभ सत गुरबचनी हर प्रभ जानिया सब हर प्रभ ते उत्पत रहाओ जिनको पूर्व लिखिया से आए मिले गुर पास सेवक पाए बन जा रिया मित्रा गुर हर हर नाम प्रगास धन धन बन जवा

मन मूर्ख मिलै सजाए। जिन जियो पिंड दिता तिस कब हूं ना चेतै, जो देंदा रिजक संभाहे। जमका फाहा गल हुन कटिए, फिर आवै जाए। मन मुख किशु न सूजै अंधले,

सब आठ सठ तीर्थ न आए, सच्चे मैल न लग गई, मल लागै दूजै पाए, धोती मूल न उतरै, जे आठ सठ तीर्थ न आए, मनमुख कर्म करे।

शब्द कसवटी लाए मन ही नाल झगड़ा मन ही नाल साथ मन ही मांझ समाए मन जो इच्छे सो लहे सच्चे शब्द सुभाए अमृत नाम सद पुंची है।

कमाए, कूड़ कुसात कमाए, गुर प्रसादी मन जने हर से पी लिवलाए। नानक गुरमुख सच कमावे, मन मुख आवे जाए पौड़ी, हर के संत सुनहु जन पाई, हर सतगुर की एक साखी। जिस तुर भाग होवे मुख मस्तक, तिन जन लै हृदय राखी। हर अमृत कथा श्रेष्ठ उत्तम,

मुख उजले हर दरगाह पहंदे जाही। श्लोक महला दूजा। जो सिर साई नानवै सो सिर दी जय डार। नानक जिस पिंजर मह बिरहा नहीं।

करे जिस आपणी तिस कर्म प्राप्त होए। नानक करणे नानक कारण करते बस है, गुरमुख बूझै कोए महला तीजा। नानक हर नाम जिनी आराध्या, अन दिन हर लिवतार। माया बंदी खसम की, तिन अगै कमावै कार। पूरा पूरा कर छोड़या हुक्म।

कनक कलश एक पाया, तिसमह तार चुवै अत निर्मल, रसमह रसन चुआया। एक जो बात अनूप बनी है, पवन प्याला साजिया, तीन पवन में एको जोगी, कहो कवन है राजा।

तौ आन सकत गल बांधिया। तरुण तेज पर त्रै मुख जो है सार अवसर ना पछाणिया। उन्मत काम महा बिख भूलै पाप पुन ना पछाणिया। सुत संपत देख इहो मन गर्बिया राम हृदय ते खोया। अवर मर्त माया मन तोले तौ भग मुख जन्म बगोया।

जन नानक गुर मिल रहसै जियो। माज महला चौथा, हर गुण पढ़िए हर गुण गुणिए, हर हर नाम कथा नित सुनिए। मिल सतसंगत हर गुण गाए, जग भौजल दुत्तर तरिए जियो। आओ सखी हर

पाई, हर हर नाम बूंद मुख पाई, हर जल निद हम जल के मीने, जन नानक जल बिन मरिय जियो, बाज महला चौथा, हर जन

अमृत रस सच अमृत बोली गुर पूरै अमृत लीचै जियो हर सत संगत सत पुरख मिलाइए मिल सत संगत हर नाम ते आइए नानक हर कथा सुनी मुख बोली गुरमत

जियो कोल कुम्हाई तिस सच्चे गुर दरबारे जियो रहाऊ। भाग होवा गुर संत मिलाया प्रभ अविनाशी घर मह पाया। सेव करी पल चसा न बिछड़ा जन नानक दास तुम्हारे जियो।

लाल रंगीले गहर गंभीर बेअंत गोविंदे ऊंच अथाह बेअंत स्वामी सिमर सिमर हौ जीवा जियो दुख पंजन निदान अमोले निरभौ निरवैर अथाह अतोले अकाल मूर्त अजूनी संभौ मन सिमरत ठंडा थीवा जियो सदा संगी हर रंग गोपाला ऊंच नीच करे प्रतपाला।

संत खेल है तुम संग गोपाला। अपने संत तुद खरे प्यारे, तू संतन के प्राणा जियो। उन संतन कह मेरा मन कुर्बाने, जिन तू जाता जो तुद मन पाने। तिन कह संग सदा सुख पाया, हर रस नानक तृप्त अगाना जियो। माज महला पंजवा।

खीर अगा वै ज्यों निर धन धन देख सुख पावै त्रिखावंत जल पीवत ठंडा त्यों हर संग इहु मन पीना जियो ज्यों अंधियारै दीपक परगासा भरता चितवत पूरन आसा मिल प्रीतम ज्यों होत आनंदा त्यों हर रंग मन रंगीना जियो संतन मोको हर मार्ग पाया साध कृपाल हर संग गिजाया हर हमरा हम हर के दासे हर हमरा हम हर के दासे नानक शब्द गुरु सच दीना जियो माज महला पंजवां अमृत नाम सदा निर्मलिया सुखदाई दुख बिडारन हरिया अवर साध चख सगले देखे।

जिनी दर्शन पेखा से कर भले जिनी हर जस लेखा से चरण सुहावे जो हर मार्ग चले हौ बल तिन संग पछाणा जियो सुन साजन मेरे मीत प्यारे साध संग खिन माहे उधारे किल विख काट होवा मन निर्मल मिट गए आवन जाना जियो किल विख काट होवा मन निर्मल मिट गए

गुण निदान अमृत हर नामा हर ध्याए ध्याए सुख पाया जियो मनसा धार जो करते आवे साध संग जन्म मरण मिटावे आस मनोरथ पूर्ण होवे पेटत गुरदर साया जियो अगम अगोचर किशमित नहीं जानी साधक सिद्ध त्याव है ज्ञानी खुदी मिटी चूका भोलावा गुरमन ही मह प्रगटाया जियो आनंद मंगल कल्याण निधाना सुख सहज हर नाम बखाना होए कृपाल स्वामी अपना नानक नाओ नानक कर्म है आया जियो माज महला पंजवा।

भेटत संग साध संतन कह सदा जपौ दयाला जियो प्रभ अपना सास सास समारौ ए मत गुर प्रसाद मन धारा।

सो सच स्वामी रिजक सब सिखाओ दिए जियो। नाम जपत सर्व सुख पाई है, सब पौ बिन सह हर हर त्याई है।

सबल एहा है कारी जियो, दृष्ट तार अपना दास सवारिया, कट कट अंतर पार ब्रह्म नमस्कारिया, एक सविण होर दूजा नाहीं, बाबा नानक ए मत सारी जियो, माज महला पंजवा।

जाप अलख अपेवा काम क्रोध किलबिख गुर काटे पूर्ण होई आसा जियो पूर्ण भाग पय जिस प्राणी साध संग मिले सारंग पानी नानक नाम वस्या।

सो गुर मिल निहचल कहना, प्रेम भगत जिस कै मन लागी, गुण गावे अन दिन नित जागी, बहां पकड़ तिस स्वामी मिले, जिस कै मस्तक लहना, चरण कमल भगता मन उठे, बिन परमेश्वर सगले मुठे, संत जना की धूड़ नित बांछ है, नाम सच्चे का गहना, उठत बैठत हर हर गाइय।

जाए। जिन सतगुर मिलिया से बड़भागी, पूरे कर्म मिला बनिया। पे अड़ै तन अन दिन सुती, कंत विसारी अवगण मुती। अन दिन सदा फिर

मनमुख पाप पचा बनिया एक रंग राते जो तुद आप लिव लाए पाए भगत तेरे मन पाए सतगुर सेवन सदा सुखदाता सब इच्छा आप पूजा बनिया हर जियो तेरी सदा शरणाई आपे बख्श हैं देव।

दिन सार संभाल हर राखहि गुरमुख सहज समावणिया। तुद जेवड मैं होर ना कोई तुद आपे सिरजी आपे गोई तू आपे ही कड़ भन्न सवार है।

मन मुख मुगद करह चतराई नाता तोता थाए ना पाई जेहा आया तेहा जासी कर अवगण पछो तावणिया मन मुख अंधे किशु ना सूझे मरण लिखाए आए नहीं बूझे मन मुख कर्म करे नहीं पाए।

है। अमृत मन तन बाणी रत्ता अमृत सहज सुना बनिया मन मुख भूला दूजै पाए खुआए नाम न ना लेवै मरै बिख खाए आन दिन सदा विष्टा महवासा बिन सेवा जन्म गवावणिया अमृत पीवै जिसनों आप पी आए गुर प्रसादी सहज लिवला।

अनहद धुन बाणी दर सच्चै सोभा पावणिया। निर्मल ते सब निर्मल होवै, निर्मल मनुआ हर शब्द परोवै। निर्मल नाम लगे बड़ भागी, निर्मल नाम सुहावणिया। सो निर्मल

मत हरण सपा बनिया इस गुफा मह एक थान सुहाया पूरा गुर हौम परम चुकाया आन दिन नाम सलाहन रंग राते।

मैं मल लाई मन मुख सदा बद मैला हो मैं मल लाई इशनान करे पर मैल ना जाई जीवत मरे गुर शब्द बिचारे हो मैं मैल चुका बनिया रतन पदार्थ करते पाया पूरे सतगुर शब्द सुनाया गुर प्रसाद मिटिया अंधियारा घट चानन।

कौन कर्म कौन निष्कर्मा, कौन सो कहे कहाए जियो, कौन सो सुखिया कौन सो दुखिया, कौन सो सनमुख कौन वे मुखिया, किन विद

गुरमुख कर्म गुरमुख निह कर्मा, गुरमुख करे सो सुभाए जियो। गुरमुख सुखिया मनमुख दुखिया, गुरमुख सनमुख मनमुख वे मुखिया। गुरमुख मिलिया

है रखवाला, मात गर्भ में तुम ही पाला, माया अगन न पूहै तिनको रंग रत्ते गुण गावणिया, क्या गुण तेरे आख संभाली, मन तन अंतर तुद नदर निहाली, तू मेरा मीत साजन मेरा स्वामी, तुद बिन अवर न जानणिया, जिसको तू

मर जाती। गुरमुख रंग चलूलिया रंग हर रंग राती, सो सेव हो सत निरंजनो हर पुरख बिधाती। तू आप सुजान है वट पुरख बिडाती।

विचार महला पहला वस्त्र पखाल पखाले काया आपे संजम होवे अंतर मैल लगी नहीं जाने बाहरो मल मल धोवे अंधा फूल पया जम जाले वस्त पराई अपनी कर जाने होमै विच दुख काले नानक गुरमुख होमै टुटे ता हर हर नाम त्यावे नाम जपे नामो आराधे नामे सुख समावे पवड़ी

मैं बनजारण राम की तेरा नाम वखरवा पार जी रहाओ कोकिल होवा अंब बसां।

भगत करहै मूर्ख आप जनावहै, नच नच टपहै बहुत दुख पावहै। नचै टपै भगत ना होए, शब्द मरै भगत पाए जन सोए। भगत वशै

गुरमुख नाम निधान लय दरगाह लय छिडाए रहाउ। लख चौरासी परम दे मन हठ आवे जाए, गुर का शब्द न चीन्यो फिर जो नहीं पाए। गुरमुख

वडभागी सतगुर मिलै, वडभागी सतगुर मिलै, मुख अमृत पाईऐ। हो मैं दुविधा बिन सजाए, सहजे सुख समाईऐ।

मत मलीन प्रगट भई जप नाम मुरारा शिव शक्त मिटाइया चूका अंधियारा तुर मस्तक जिनको लिखिया तिन हर नाम प्यारा हर कित बिद पाई संत जन हो जिस देख हों जीवा हर बिन चसा ना जीव।

भौजल अकथ कथा सुन हर की, गोविंद सत्संगत में लाए, हर रस रसना राम गुण गाए रहाओ। जो जन त्यावह हर हर नामा, तिन दासन दास करो हम रामा, जन की सेवा उत्तम कामा, जो हर की हर कथा।

नाम हर हर जग हर हर जग अवखद हर हर नाम हर हर जग अवखद हर हर नाम हर साथे तिनके पाप दोख सब बिनसे जो गुरमत राम रस खाते जिनको लिखत लिखे तुर मस्तक

त्यों मन मुख गर्भ गलांढे हम जानिया कछु ना जान है आगे ज्यों हर राख त्यों ठाडे हम भूल चूक गुर

हर हर अर्थ शरीर हम बेचया, पूरे गुर कै आगे सतगुर दाता नाम दिढ़ाया, मुख मस्तक भाग सभागे। राम गुरमत हर लिब लागे रहाओ, कट कट रमैया रमत राम राय, गुर शब्द गुरु लिब

गुर ज्ञान गुरु लिव लागे, अज्ञान अंधेरा बिनस बिनासियो, घर वस्त लही मन जागे, साकत बद्धक माया तहरी, तिन जम जोहन लागे।

वडभागी गुर दर्शन पाया, धन धन गुरु लिव लावै, गुरमुख हर लिव लावै रहाउ, हमरा ठाकुर सतगुर पूरा।

गुर पुरख अजन्मा वडभागी मिल रामा। गुर जोगी पुरख मिलिया रंग माणी जियो, गुर हर रंग रतड़ा सदा निर्बाणी जियो। वडभागी मिल सुगड़ सुजानी जियो, वडभागी

मिल पूर्व लिखियड़े तुर कर्मा, सावन वर्ष अमृत जग छाया जियो, मन मोर कोह केड़ा शब्द मुख पाया जियो, मन मोर

व्यापत अहम बुद्ध का माता, व्यापत पुत्र कलत्र संगराता, व्यापत हस्त घोड़े अरबस्ता, व्यापत रूप जोबन मदमस्ता, व्यापत

इस ग्रह में कोई जागत रह साबत वस ओह अपनी लह रहाओ। सगल सहेली अपने रसमाती ग्रह अपने की खबर न जाती मुसन हार।

सिमर सिमर कसमल सब हर रे, मानस देहे ना मानस देहे बहुर नह पावे, मानस दे बहुर नह पावे, कशु कशु उपाओ मुक्त का कर रे, मानस दे बहुर नह पावे, कशु उपाओ मुक्त

रहावों रिद सिद्ध बुलावों ताज कुल है सिर छतर बनावों बिन जगदीश कहां सच पावों खान मलूक कहावों राजा अबे तबे कूड़े है पाजा अबे तबे कूड़े है पाजा बिन गुर शब्द न सब

दी अलख अपेवा। सुल्तान खान बादशाह नहीं रहना, ना मोह भूले जम का दुख सहना। मैं तार नाम ज्यों राखो रहना,

पाया सेवा गुरचरणी मन ते मन मानिया चूकी अहं ब्रह्मणी इन बिद कौन कौन नहीं तारिया हर जस संत भगत निस्तारिया प्रभ पाए हम अवर ना पारिया साच महल गुर अलख लखाया निहचल महल नहीं छाया माया साच संतोखे परम चुकाया जिन कै मन वसया सच सोई तिन की संगत गुरमुख होई ना

जन पूरा तित कट अनहत बाजे तूरा जो जन राम भगत हर प्यार से प्रभ राखे कृपा तार जिनकै हृदय हर हर सोई तिनका दर्श परस सुख होई।

सुख तारा इत उतरा खो दीन दयाला तौ शरणागत नदर निहाला रहाओ जह देखो तह रव रहे रख राखन हारा तू दाता भुगता तू है तू प्राण अधारा किरत पया अद ऊर दी बिन ज्ञान बिचारा बिन उपमा जगदीश की बिन सैना अंधियारा जग बिन सत हम देखया लोभे अहंकारा गुर सेवा प्रभ पाया सच मुक्त द्वारा निज घर महल अपार को अपरंपर सोई बिन शब्द थिर को नहीं बूझै सुख होई क्या ले आया ले जाए क्या पास है जम जाला डोल बद्दा कस जेवरी आकाश पाताला।

पहला गुर प्रसादी बूझले तो हुए निबेरा कर नाम निरंजना सो ठाकुर मेरा बिन गुर शब्द

रोता। आवत कौ जाता कहे जाते कौ आया। पर की कौ अपनी कहे अपनों नहीं पाया।

ब्रह्म समाया राग गौड़ी ग्वारे री महला तीजा अष्टपदिया एक ओंकार सतगुर प्रसाद मन का सूतक दूजा पहाओ परमे फूले आवो जाओ मन मुख सूतक कब है न जाए।

आए। गुरमुख कर्म धर्म सच होई, गुरमुख अहंकार जलाए दोई। गुरमुख नाम रते सुख होई, अपना मन पर बुद्ध हो बूझो सोई। लोक समझावहो सुने ना कोई, गुरमुख समझो सदा सुख होई।

बहुत अभिमाना बग ज्यों लाए बह नित ध्याना जम पकड़िया तब ही पछताना बिन सतगुर सेवे मुक्त ना होई गुर प्रसादी मिले हर सोई।

हारै गुर कै शब्द पंच संघारै आप तरै सगले कुल तारै माया मोह नत बाजी पाई मन मुख अंध रहे लपटाई गुरमुख अलिपत रहे लिवलाई बहुते पेख करै पेख धारी।

ओहो अत परम पुलहाई, दिन गुर सेवे बहुत दुख पाई, नाम रत्ते सदा बैरागी, गृह अंतर साच लिव लागी, नानक सतगुर सेव है से बडभागी। गौड़ी महला तीजा, ब्रह्मा मूल वेद अभ्यासा, तिस्ते उपजे देव मोह प्यासा, त्रै गुण भरमे नाही निज कर वासा।

दुख खाए, जम डंड सहे सदा दुख पाए, जमुआ ना जो है हर की शरणाई, होमे मार सच लिवलाई, सदा रहे हर नाम लिवलाई।

कोई नानक गुरमुख बूझै कोई गौड़ी महला तीजा नाम अमोलक गुरमुख पावै नामो सेवै नाम सहज समावै।

जा मन ही मन सवारिया पै सहज सुभाए शब्द मन रंगिया लिवलाए निज घर वसिया।

तब इसको है मुश्किल भारी, जब इन करने हार पछाता तब इसनो नाही किछताता, जब इन अपनो बांधियो मोहा आवे जाए सदा जम जोहा, जब इसते सब बिन से परमा भेद नाही है पार ब्रह्मा, जब इन किश कर माने भेदा तब ते दुख दंड अर खेदा, जब इन एको एकी बूझया तब ते इसनो सब किश सूझया, जब एहो तावै माया अर्थी न तृप्तावै न तिसलाथी, जब इसते एहो होयो जौला पीछे लाग चली उठ कौला, कर कृपा जो सतगुर मिलियो मन मंदिर मह दीपक जलियो जीत।

आप होए। गुर शुभ दृष्ट सब ऊपर करी, जिसका हृदय मंत्र दे हरी। अखंड कीर्तन तिन भोजन चूरा, कहो नानक जिस सतगुर पूरा। गौड़ी महला पंजवा, गुर का शब्द हृदय अंतर तहरै।

दिन सबेताला गिर तार धरण गगन अर तारे रव सस पवन पावक नीरारे दिन सरैन बरत अर भेदा शास्त्र सिमरत दिन सहंगे बेदा तीर्थ देव देहुरा पोथी माला तिलक सोच पाक होती तोती डंडौत प्रसादन भोगा गवन करे गो सगलो लोगा जात वर्ण तुरक अर

आराम सहज सिफत भगत तत ज्ञाना सदा आनंद निश्चल सच थाना तहां संगत साध गुण रसै अन पौ नगर तहां सद वसै तह पौ परमा सोग ना चिंता आवन जावन मृत ना होता तह सदा आनंद।

साध संग तरै गौड़ी महला पंजवां जो इस मारे सोई सूरा जो इस मारे सोई पूरा जो इस मारे तिस है वडियाई।

आत्म घाती साकत नीच तिस कुल नहीं जाती जिस भया कृपाल तिस सतसंग मिलाया कहो नानक गुर जगत तराया गौड़ी महला पंजवा।

बाणी। गुर कै बचन मिटिया मेरा आप, गुर की दया ते मेरा बड़ परताप। गुर कै बचन मिटिया मेरा परम, गुर कै बचन पेख्यो सब ब्रह्म।

हर संग रखवाला, पूर्ण पुरख नवतन नितबाला, हर अंतर बाहर संग रखवाला, कहो नानक हर हर पद चीन सर्बसना।

निरन दुख पंजनो भगत वचल हर नायो अनाथ है नाथ कृपाल दीन समृत संत ओटायो निर्गुणी आरे की बेनती देहो।

समानिया मिल सखी सहेलड़ी हो हम फिर रावेहा गुर पुछ लिखोंगी जियो शब्द स्नेहा शब्द साचा गुर दिखाया मन मुखी पछतानिया निकस जाता रह आसिर जाम सच पछाणिया।

प्यारे अहंस रंग राती जियो गुर शब्द विचारे। गुर शब्द विचारे हम मारे इन बिद मिलो प्यारे। साधन सुहागन सदा रंग राती साचे नाम प्यारे। अपने गुर

आप रहया आप सब कल धारिया बिनवंत नानक पैज राखो सब सेवक शरण तुम्हारिया मोहन तुद

सागर निमख सिमरत साधिए। कलमल है दहता शुद्ध करता दिनस रैन अराधो बिनवंत नान।

तरा। गुरुदेव सतगुर पार ब्रह्म परमेश्वर गुरुदेव नानक हर नमस्कारा। सलोक आप है किया कराया आप है करने जोग नानक एको रव।

या जुग मह एक है कौ आया जन्मत मोहयो मोहनी माया गर्भ कुंट मह उर्ध तप करते सास सास सिमरत प्रभ रहते उर्ज परे जो छोड़ छड़ाना देवनहार मन है बिसराना तार हो कृपा जिस है गुसाई एत ओत नानक तिस बिसरहो नाही। श्लोक आवत हुक्म विनाश हुक्म।

बहुत गर्भवासे मोह मगन मीठ जोन फासे इन माया त्रै गुण बस कीने आपन मोह कटे कट दीने ए साजन कछ कहो उपाय।

राष्ट्रपति सिमराओ सिमर सिमर सुख पावाओ काल कलेश तन माहे मिटावाओ सिमराओ जास विसंभर एक है नाम जपत अगंत अनेक है वेद पुराण सिमरत सुधा खेर कीने राम नाम एक आ

सन दसना प्रभ कौ सिमरह से धनवंते प्रभ कौ सिमरह से पतवंते प्रभ कौ सिमरह से जन परवान प्रभ कौ सिमरह से पुरख प्रधान प्रभ कौ सिमरह से बेमुहताजे प्रभ कौ सिमरह से सर्व के राजे प्रभ कौ सिमरह से सुखवासी प्रभ कौ सिमरह सदा अविनाशी।

निर्मल कर्म सगल क्रिया मह उत्तम क्रिया साध संग दुर्मत मल हिरया सगल उदम मह उदम भला हर का नाम जपहो जी सदा सगल बानी मह अमृत बानी हर को जस सुन।

अष्टपदी मानुष की टेक बिरछी सब जान देवन कहो एक भगवान जिसका दिया रह अघाय बहुर न तृष्णा लाग आए मारे राखे को आप मानुष कै कृष्णा ही हाथ तिसका हुक्म।

सफल दर्शन पेख पुनीत परसत चरण गत निर्मल रीत पेट संग राम गुण रवे पार ब्रह्म के दरगाह गवे सुनकर वचन करन।

आप अष्टपदी जब अकार एहुकाश नाम दृष्टे ता पापुन तब कहते होता जब तारी आपन सुन समाध तब बैर विरोध किस संग कुमात जब इसका वर्ण चिन्ह ना जापत तब हरख सोग कहो किस है व्यापत जब आपन आप पार ब्रह्म तब मोह कहाँ किस होवत परम आपन खेल आप वर्ती जा नानक करने हार ना दूजा जब होवत प्रभ केवल तनी तब बंद मुक्त कहो किस कौ गनी जब एक कह हरागमा पार तब नरक सुर्ग कहो कौन अवतार जब निर्गुण प्रभ सहज सुभाए तब शिव शक्त कहो कित ठाए जब आप है आप अपनी जोत तहै तब कवन निडार कवन कत डरै आपन चलत आप करने हार नानक ठाकुर अगम अपार अविनाशी सुख आपन आसन तह जन्म मरण कहो कहाँ विनाशन जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जम की त्रास कहो किस होए जब अविगत अगोचर प्रभ एका तब चित्र गुप्त किस पूछते।

सृष्टम। चरण कमल जाके अनूप, सफल दर्शन सुंदर हर रूप। तन सेवा सेवक प्रवान, अंतर जामी पुरख प्रधान।

अतुल क्यों तुलिया सेवड भागी जे तुद ध्याए दे जिन सतगुर मिलिया। सतगुर की बाणी सत स्वरूप है गुरबाणी बनिया। सतगुर की बाणी सत स्वरूप है गुरबाणी बनिया। सतगुर की रीस है होर

तिस गुर सिख गुरु उपदेश सुनावै, जन नानक धूड़ मंगै तिस गुर सिख की, जो आप जपै अवरह नाम जपावै पौड़ी, जो तुद सच ध्याय दे से बिरले थोड़े, जो मन चित एक अराध दे तिन की बरकत खाहे असंख करोड़े, तुद नो सब ध्याय दी।

जो करे हर वस्त संभाले, नाम निधान हर बन जीए हीरे पर वाले, विण काया जे होर थै धन खोज दे, से मूड़ बेताले, से उजड़ परम पवाई है, ज्यों चाड़ मिर्ग पाले। श्लोक महला चौथा। जो निंदा करे सतगुर पूरे की, सो औखा जग में होया।

कहे मन खोटे कूड़ कूड़ियारे। जहां गुर कहे उठो मेरे भाई, बह जाहे पुसर बगलारे। गुर सिखा अंदर सतगुर वरतै, चुन कढे लद्दो वारे। ओए अगै पिछै बह मोह छपाए।

मरने जिसनु आया प्रेम रस तिसै ही जरने बाणी उच रहै साध जन अम्यों चल है चरणे पेख दर्शन नानक जीव्या मन अंदर तरणे।

प्रभ बेअंत किश अंत नाहे सब तिसै करणा अगम अगोचर साहेबो जिया का परणा हस्त दे प्रतपालदा परण पोखण करणा।

बहु करै, दुख बिखिया सुख तन पर हरै, काम क्रोध अंतर तन हिरै, दुविधा छोड़ नाम निस्तरै, सिफत सलाहन सहज आनंद, सखा सैन प्रेम गोविंद, आपे करे आपे बख्शिंद, तन मन हर

रहाओ। हर हर हार कंठ ले पहरै, दामोदर दंत ले, कर कर करता कंगन पहरै, इन विद चित तहे। मधुसूदन कर मुंदरी पहरै, परमेश्वर पट ले, तीरज धड़ी बंधावै कामण, श्री रंग सुरमा देई।

सब जी सम्हारे, एको एक आप एक एक है सगला पासारे। जब जब होए सगल साध जन, एक नाम तिहाए बहुत उधारे।

सच अमली आसा महला पंजवा उद्यम किया कराया आरंभ रचाया नाम जपे जप जीवना गुर मंत्र दृढ़ाया पाए पर है सतगुरु कै जिन भरम बिदारिया कर कृपा प्रभ अपनी सच साज सवारिया रहा कर गहलीने अपने सच हुक्म रजाई।

आढ़ कौ फिरत ढूंढते, मन सगल तृष्ण बुझ गई। एक बोल पी खब तो नाही, साध संगत सीत लई।

अंदर महल अनेक है जियो करे वसेरा, मन चिंदिया फल पाए सी फिर होए ना फेरा। पारखियां वथ संभाल लई

बिरहड़े कर चौथा शंता की जात। एक ओंकार सतगुर प्रसाद पार ब्रह्म प्रभ सिमरिय प्यारे दर्शन को बल जाओ। जिस सिमरत दुख भी

प्रधान जप तप कर कर संजम थाकी हठ निग्रह नहीं पाई है। नानक सहज मिले जग जीवन सतगुर बूझ बुझाई है।

अर्थ ले हो भगत करो तुम शह केरी जो शह प्यारे पावे अपना भाणा तुम करो ता फिर शह खुशी ना आवे भगत पावे हो मार्ग बिखड़ा।